सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख निरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। ला कीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तो ओदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं ओदे अगे। तां तन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकाग्र चित हो के मोह के बोलन बोली है जित सुन दरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल कर दे। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी। तन गुरु नानक पातशाह

नितनेम नहीं त्यागना, नितनेम जरूर करना। नितनेम दा फल वखरा मिलेगा। नितनेम जो करदे हन गुरु नानक ने कदे भी उना दी बाह नहीं छड़ी। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पलके उठार नाम त्यावै। उदम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै। किसे प्यार वाले ने भी कहा, पहले पैरे सब कोई जागे, दूजे पैरे भोगी, तीजे पैरे तस्कर जागे, चौथे पैरे जोगी। कोई प्यार वाले गुरमुख पढ़ रहे सन के अमृत वेले दा जागना, जे कोई जागे नित, एक बधेंदी आरजा, दूजा साहिब आवे चित। क्योंकि जदों मनुख सुता हुंदा है तां इसदे स्वास बहुत खर्च हो रहे हुंदे आ। जदों अमृत वेले जाग के परमेश्वर की भक्ति करदा है तां बहुत घट श्वास इससे खर्च आउंदे आ, इसलिए उम्र वध जांदी है। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धां नूं कहा, ऐ सिद्धो, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ने किसी पदार्थ नाल नहीं रीझना। जे उसकी प्रसन्नता चाहते हो, उदी कृपा चाहते हो, तो अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। उस अकाल पुरख दियां वड्याईयां करो अमृत वेले उठ के।

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सतसंगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उचारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए ता उस तरह एवें किसे नू कलंक लाउना या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह शान बीन कर लेनी चाहिदी है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा वही हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया वही चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर की भगति विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर देता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नू की जवाब देवांगी। जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाम मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया ता राजा मेरे ते शक करेगा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। सारी संगत ने जदों अरदास कीती ता अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसे तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तां दे, मेरियां हैन नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उचारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਪਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ

हम बन बन जाओ और नैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आस

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईश्वर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उना दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुनणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईश्वर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं हुंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए, शायद 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बोलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए? दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे, बाबा इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह, पुछो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईश्वर सिंह जी, नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामण चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पाणी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं जग

0: देख है क्या गुण तेरे साश माली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी तरियारे गुरु नानक सुनया पे किया
1: से फिर गर्वास ना हो।

भाई बहुत मद जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो।

कहायो पाठ अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब नमस्कार करते हैं।

दूसरे गुरु बने गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ए देवी दे पुजारी सन, हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी दे दर्शन करन जाया करदे सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियां दे नाल देवी दे दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा कीता। भाई लैणा अपने साथियों नूं कहन लगे, मैनूं पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने। बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी। भाई मेरा दिल करदा है मैं दर्शन कर आवां, देखा कि गुरु नानक कैसा है। साथियों नाल सलाह करके घोड़े ते सवार होए ने। भाई लैणा अपने डेरे तो चल पए उस जगह वाल जिथे गुरु नानक वसद। पुछते जा रहे ने ओ डेरा ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक बैठा है। अजकल आप गुरुद्वारे कहने पहला धर्मशाला क्या करते सन, जिथे बैठ के परमेश्वर की सिफत की जाए। एक परमेश्वर तो सिवा होर कोई गल ना हो, जिथे सेवा ते सिमरन हो, जिथे दर्दवंदा लोड़वंदा की सेवा की जाए, जिथे दुखियां का दुख दूर किया जाए, जिथे धर्म की गल हो धर्मशाला ओ गुरु का परमेश्वर का घर। भाई लैणा घोड़े ते सवार ने पुछते जा रहे ने कि धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा। पुछदिया काफी दूर चले गए। हुण अगों किसे कोल पुछना है कोई नजर ना आया ता भाई लैणा हैरान हो गए। एक बड़ी ही सोहनी सूरत जिदे चेहरे तो नूर टपकदा है, जिन्हां दे बोल फरकदे ने, सूरत देखे मन नूं ठंड पैंदी। ओ सूरत पता नहीं किधरों चलदी होई भाई लैणे दे सामने आ गई। और जद भाई लैणा उस सूरत नूं देखदे ने अखां चमकण नूं दिल नहीं करदा, अखां कहिंदियां ने कि मैं सूरत देखदा रहां। ए सूरत अखां तों ओले ना होवे, इन अखां दे नाल बड़ा कुछ देखिया है पर एहो जी सूरत अज तक देखी नहीं। ते भाई लैणा उस सूरत नूं पुछदे ने ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा। मैं गुरु नानक दे दर्शन करने। सत संगत।

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह ने ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नु मिल

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे।

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया। उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई आखण लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है। प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखा दूर हो जांदे ने। राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखा सारिया ही मुक जांदियां ने। अनारद जी इनी गल करके तुर गए ने। बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा। राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गए किन्ने महीने बैठा रहा। अज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है। इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए ने। हुण ते पिंगला नहीं दे रहा जदों इसने कुछ तकिया ना। ऐ प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है। सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है। अज ते तेरियां बख्शिशां अज ते तेरे

बेसवाद आए। महापुरुष बाहर खलोते, बरसात हो रही है, सर्दी दी रुत है, कंब रहे नी, ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गई, सतपुरख आए ने, सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध दा गलास लेके आई, बाबा जी शक लगो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हत्थां दा दुध असां ने नहीं पीना, इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच

तू राम बोलेंगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरशां ने दुध सकिया, हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो दियां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया। तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इसलिए सदा वास्ते खुल गए। ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहे गुरु अल्लाह आखे।

सदैव जी कहन लगे कि जोगा आखो सतनाम श्री वाहे कि जोगा है तू कोई मां प्यो जोगा होता है कोई अपने आप जोगा कोई दुनिया जोगा कोई देश कौम जोगा तू कि जोगा जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछा बच्चे दे कर्म देखो।

चौकीदार खड़ा देखिया, थोड़ी जी संगा आई ते जोगा सिंह आगे चला गया। चक्कर कट के आना, पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे शिवारी चढ़ांगा, पर साथ संगत कौन है चौकीदार? कलगिया वाला साधु जेड़ा आया ही रखिया करन वास्ते है, वो पर

कि सारी रात मैं पहरेदार बन के खड़ा रहे हैं। दुख है ते केवल इस गल का तू मैनु बेसवा दे चुबारे थले खड़ा करवाया। ओ जोगा सिया होवे मेरा सिख होवे गुरु नानक का सिख ते जावे ओ बेसवा दे द्वारे। ओ जोगा सिया ऐसे सिखा दी ते मैं कदी भी कामना नहीं जद सुने ते जोगा सिया उबा मार के रोवे गुरु दे चरण पकड़ ले कहन लगा महाराज मैं समझिया सी कि मैनू किसी ने नहीं देखा ये भी समझदा सा कि तैनू भी पता नहीं लगा पर बादशाह की पता सी तू ही ते बांह पकड़ के बजाण वाला सी। असी हमेशा यो ही समझते हैं सानू जे दुनिया नहीं देख रही तो गुरु भी नहीं देखता पर बादशाह दुनिया की नजर तू बच सकते हैं पर तेरे तू नहीं पर गुरु का बिरद है। जोगा सिंह फिर

अब अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उस संभालिए गुआइए ना आपसे ईर्खा दुर्दा आपसे नफरत छड़ के छोटियां मोटियां गल्लां छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिन्हां हिरदे विच प्यार नहीं जिन्हां दे मना विच प्यार नहीं उन्हां दे घरां विच प्यार नहीं जिन्हें घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे संगमरमर लगाने नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है।

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुर

भाई शाह भाई गुरदास जी इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन

निम्रता धारण करनी। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जती है पर नारी ती भैन वखाने, वेख पराइयां चंगियां मामा भैणा तियां जाने। ऐसा गुरसिख दा पवित्र जीवन है।

धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। तीसरा नियम पराई वस्तु पई है उसनू हाथ तक नहीं लाउना, किसे दी इमानत विच ख्यानत नहीं करनी। चौथा नियम ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम जो गुरु कहिंदा है उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नू रोशन करना, अपने जीवन नू टालना। हुण छेवा नियम भाई साहब दसदियां थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना, संसार नहीं त्यागना, ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहंदे न अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे, अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु, ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहंदे हन के जिन्हां विच ए छियां छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणां विच वसना। आठ पहर प्रभु बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।